दुनिया के मेहरबान दोस्तों ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोते हो ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा

से छुप छुप के सनम रात भर जागेंगे हम, उनसे छुप छुप के सनम आंख झपके ना कभी, चांद

दुनिया के मेहरबान दोस्तों, प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोतियों, ए मोहब्बत का पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दी खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा

से छुप छुप के सनम रात भर जागेंगे हम, उनसे छुप छुप के सनम आंख झपके ना कभी चांद तारा।

लो जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मित्रों, प्यारियों, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम अलैकुम। सो प्रोग्राम की शुरुआत थोड़े नाल कुछ गीतां दे नाल, फिर खबरां वल, फिर डॉक्टर साहब। सो पहला गीत आप सुन रहे मिस पूजा जी होना था, ते गाना थोड़े नाल